अवर रामचंद्र की जय। एक मैं सज एक तो मैं आप ही मंद बुद्धि हूँ। फिसली माई लॉर्ड मंद बुद्धि एंड विदाउट दैट नॉलेज आई एम डॉल विथ इट माई लॉर्ड। दूसरे सेकंडली मोह के अधीन हूँ एंड आई एम डिल्यूडेड। तीसरे हृदय का कोटिल Because of the crookedness of my heart, he says, "Hriday ka kutila, aur gyan se rahit hu, and being without that wisdom, my Lord, fir he dina bandhu Bhagwan, aapne bhi mujhe bhula diya. You know, for these reasons, I may not have recognized you, my Lord, but you are the friend of the humble, you are most compassionate, my Lord." But you have forgotten me, my Lord, I beseech thee. Ayodhya Pati Ram Chandra ki jai. Let us sing together the Shri Ram Stuti. Pray from the depth of your hearts. Let us pray with all love, faith and belief in Bhagavan as we sing this Shri Ram Stuti.

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जराजलं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं दृष्टमे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरि ओम सत्य सनातन धर्म की जय. वी डू द सिंपल चैंट दिस वी एंड दिस मोस्ट ब्यूटिफुली थिंग. थैंक यू वेरी मच लिसनर्स एंड व्यूअर्स.

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरा रे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Your name in his heart has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: का धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति
1: योर एन्चांटेड जर्नी टू ब्यूटीफुल ड्रीम्स योर सुंदर सपना ऑन रेडियो जागृति 102.7 एफएम रिकी रामलगन विथ यू एंड इट्स योर सुंदर सपना 102.7 एफएम

0: One dream, one mission. Your voice, your vision. Radio Jagriti, 102.7 FM.
1: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
2: आई एम राम नरेश द्वारिका inviting you to the program Addiction and Recovery, where we discuss issues relating to alcoholism and drug addiction. Be you an active user or in recovery, tune in every Thursday at 9 a.m. This is an interactive program and you can call 663-1027 or 663-2335, where we can interact. Join me, Ram Naresh Dwarika, for the program Addiction and Recovery, every Thursday at 9 a.m.

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक

0: इसकी चाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया।
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मोटे।
0: इसके दांत तो देखो।